हमारी आज ने हासिल में सफा में आप सब हम रिया हो आप लोग सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते मु हूं अपने हाथे आपनी बोन अंजलि पानेश्वर ने आज वार मंगलवार ने तारीख 15 सितंबर 2026 नो दाड़ो है माइन मुनो में देख ही रहा हो कि अपने स्टूडियो ने खड़ी में हाजिर ना पास बाकी के हैं तब आपने शुरुआत करा हाजिरी सभा में पुनः प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा भाई बुनो आज सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ताह की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक की जुड़ी कार्यक्रम आराधना तक की इना में अपना हम रंगा आज का सुविचार ने हाथे भक्ति में गीता ने मनस क्रम में अगड़े बढ़ंगा अमारी ने तमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज ने अड़ी वह कार्यक्रम आप हम ऋषको का ठीक 5:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथे इनिस कड़ी में बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत थागा जिन्हें कहीं बालकन बालकन इटली कार्यक्रम सच्चा बचपन आ कार्यक्रम आप हम ऋषको का ठीक 6:00 प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मुँह आपनी गुण अंजलि पारेश्वर ने हाथे इनिस कड़ी में अपना अगड़ी रुक करेंगा अपने किसान भाई बहनों तक की जुड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हम ऋषको का ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटली मुँह ने मारे हाथे रहेंगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट इनिस कड़ी में अपना अगड़ी बढ़ेंगा अपने अधिकार कानून नियम तक की जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हम ऋषको का ठीक 7:00 प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटली मुँह ने मारे हाथे रहेंगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट इन्हें बाद भयन मनो बिजू कार्यक्रम शुरू था गा ठीक 7:30 माते कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल इन्हें बाद भयन मनो ठीक 8:00 आप हमरोगा कार्यक्रम समस्या समाधान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट निमो आपकी गुण अंजलि पारेश्वर इन्हें बाद भयन मनो मनोरंजन में था पूरी भरमार जिन्हें आप हमरोगा कार्यक्रम फिल्म 9:00 to 10:00 भी आप हम रोगा कार्यक्रम शाम का सर तो बहन मुनो आ तो हती अपने हाजे ने सभा में प्रसारित था वरा कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा अब अपने सभा ने शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था देखे जुड़ कार्यक्रम आराधना थकी

0: आज के सुविचार।
1: हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर हूं श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने वाले हैं IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। हम देखते हैं कशिश कि आज का समय तकनीक का समय है। मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर डिजिटल कामकाज तक, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने पहले बताया था, इसने हमारे जीवन और रोजगार की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। श्रोता साथियों, आज गांव हो या शहर, हर युवा के सामने अपने हुनर को आगे बढ़ाने और नई संभावनाओं को तलाशने के अवसर है। लेकिन सवाल ये है कि IT के क्षेत्र में करियर की शुरुआत कैसे करें, कौन से स्किल्स सीखें, और अगर हम छोटे शहर या गांव से है तो क्या हम भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। जैसा कि कहा था आपसे कि आईटी के क्षेत्र में करियर की शुरुआत हमें कैसे करनी है, कौन सी स्किल्स हमें सीखनी है, और अगर हम छोटे शहर या गाँव से है तो क्या हम भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं, इन्ही सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आईटी एक्सपर्ट, जो अपने अनुभव के माध्यम से हमारे युवा श्रोताओं को आईटी की दुनिया को समझने और करियर की सही दिशा चुनने में मदद करेंगे। तो साथियों, आइए बिना देर किए उनसे बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी पढ़ाई, संघर्ष, अनुभव और सफलता की कहानी को।
1: नमस्कार आकिब जी।
2: नमस्कार।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है वागड़ रेडियो परिवार में।
2: जी धन्यवाद।
1: जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और जैसा कि हमारे युवा साथी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं तो एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं
2: जी।
1: तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन उन बातों को जानने से पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: जी बिल्कुल कशिश जी, मेरा नाम आकिब अहमद है और मैं पिछले कई वर्षों से आईटी क्षेत्र में काम कर रहा हूं। वर्तमान में मैं वाग्धारा संस्था के साथ में जुड़ा हूं, एज ए आईटी लीड के रूप में काम करता हूं।
1: जी जी।
2: मेरा काम को अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो मेरा काम सिर्फ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर चलाना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को लोगों और ऑर्गेनाइजेशन के काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। मैं सॉफ्टवेयर, एमएस डाटा, वेबसाइट, डिजिटल सिस्टम्स और सोशल मीडिया के ऊपर काम करता हूँ।
1: बिल्कुल आकिब जी, तो ये तो आपका बहुत ही प्यारा सा परिचय रहा और आपने अपने क्षेत्र के बारे में और अपने काम के बारे में बताया। अब मैं यही कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जैसा कि बताया कि आप आईटी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आपने आईटी के क्षेत्र को ही अपने करियर के लिए क्यों चुना, क्या इसमें आपकी रुचि पहले से ही थी?
2: नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी रुचि पहले से ही थी। मेरे लिए आईटी का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक अच्छा करियर ऑप्शन हो। मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी रही है कि कोई भी जो चीज होती है काम कैसे करती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम बेहतर तरीके से रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: धीरे धीरे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेस्ट बढ़ता गया।
1: जी जी।
2: मुझे लगा कि आईटी में एक खास बात है कि अपन सिर्फ काम नहीं करते हैं बल्कि अपनी जो बनाई हुई जो चीज है उनको कई लोगों के लिए आसान बनाते हैं।
1: जी जी।
2: यही सोच धीरे धीरे मेरे करियर का हिस्सा बन गई।
1: बिल्कुल, तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपन से सपना नहीं था आईटी के क्षेत्र में जाने का।
2: जी, बिल्कुल।
1: लेकिन जैसे जैसे आपको इस चीज को लेकर इंटरेस्ट आने लगा तो आपने सोचा कि आप ये अपना इसमें करियर बना सकते हैं।
2: जी।
1: तो यही अब आप हमें ये बताइए कि इस क्षेत्र में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, और शुरुआत में आपको किन चीजों का सामना करना पड़ा था?
2: देखिए, शुरुआत तो इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मैं जानता भी नहीं था कि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आती है और उनका सोल्यूशन तुरंत समझ में भी नहीं आता था कि कैसे किया जाता है, कैसे नहीं करा जाता है। लेकिन मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि आईटी में हर प्रॉब्लम का आंसर हमको पहले से नहीं पता होता है, लेकिन आंसर को उसको ढूंढना पड़ता है हमें। मैंने काम करते करते सीखा कि मिस्टेक की है, मतलब प्रॉब्लम सही है, उनको सीखा है, नई टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करी है। मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस आज भी जारी है।
1: बिल्कुल।
2: मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी एक समंदर है, आप पूरे समंदर को पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये है कि आप रोज कुछ ना कुछ उससे सीख सकते हो। तो वही मैंने मेरे करियर के लिए करी और वही मेरे लिए चुनौती भी थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेक्नोलॉजी आज अलग है, कल बदल जाएगी। तो आपको ये लर्निंग जो प्रोसेस है वो हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए, तो ही आप टेक्नोलॉजी के साथ में रह सकते हो, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे।
1: जी सर, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें हर वक्त कह सकते हैं कि बदलाव आते रहते हैं, तो इनसे हम बहुत सारी चीजें ऐसे सीख सकते हैं और हमारे युवा साथी भी सीख सकते हैं।
2: जी जी जी।
1: अब मैं यही कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि आज जैसा कि आपने बताया कि आप एक आईटी मेंबर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इस पोजीशन पर पहुंचने में आपको कितना समय लगा, और साथ ही इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण क्या रहा, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई या आपका अनुभव?
2: देखिए, अगर मुझे इनमें से सिर्फ एक को चुनना हो तो मैं अनुभव कहूंगा, एक्सपीरियंस को कहूंगा, लेकिन वास्तव में तीनों की अपनी एक जगह होती है।
1: जी जी।
2: पढ़ाई ने मुझे फाउंडेशन दिया कि मैं, मेरे पास डिग्री आई और ये चीज आई है। मेहनत ने मुझे आगे बढ़ाया और एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है।
1: बिल्कुल।
2: तो मैंने एक बात महसूस की है कि डिग्री अपने को जो शुरुआत का रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन लगातार सीखने और काम करने की क्षमता को आगे बढ़कर ले जाती है।
1: जी जी।
2: मैंने एक बात महसूस करी कि डिग्री जो होती है वो एक शुरुआत में आपको एक रास्ता दिखा सकती है कि आप किस दिशा के अंदर जा रहे हो, किसने, लेकिन जो असली जो खेल शुरू होता है वो आपके अनुभव से होता है। आप जब रियल लाइफ, रियल फील्ड के अंदर जब उतरते हो तब आपको चीजें पता चलती है कि हाँ डिग्री ने मुझे एक सपोर्ट करा है कि हाँ मुझे ये आता है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स होती है वो आपको फील्ड में दिखती है। क्योंकि अब मुझे यहाँ पर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं इतने साल से आईटी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतने एक्सपीरियंस मिले हैं कि जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, मेरे को लगा ही नहीं। मेरे को फील्ड में जाके पता चला कि अच्छा ये चीज आपकी प्रॉब्लम सारी है, तो जब उसका मैं सोल्यूशन निकालता था तो मेरे को मजा भी आता था, अच्छा भी लगता था, और मुझे मेरा एक्सपीरियंस इंप्रूव भी होता था क्योंकि मुझे नई चीज सीखने को मिलती थी। जब तक नई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप नई चीज नहीं सीख पाओगे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसलिए अनुभव जो रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है।
1: बिल्कुल अकीब जी, आपने सही कहा, और आपने जैसा कि बताया कि इस क्षेत्र में आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो अब आप यही हमारे युवा साथियों को ये बताइए कि हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी वर्तमान में अपना करियर बनाने को लेकर काफी चिंतित में रहते हैं, और कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो आईटी में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वे इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं,

0: सॉल्विंग वाली चीजें करता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, तो ये उसको आइडिया भी लग जाता है कि अब मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। और आज
1: बिल्कुल
0: एआई का समय है, इसलिए एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि अपने काम को बेहतर और तेज करने वाले साथी की तरह समझना भी जरूरी है। मेरी सलाह होगी कि एक साथ 10 चीजें सीखने के बजाय एक स्किल्स को चुनिए, उसे अच्छे से सीखिए और फिर उसे रियल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कीजिए।
1: बिल्कुल आकिब जी, आपने ये सही कहा। यहीं आप हमें अब युवा साथियों को ये बताइए कि किस प्रकार से हमारे जो युवा साथी हैं वो अपनी आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अगर वो आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो देखते हैं ना कि हम शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसी ढेर सारी समस्याएं आने लगती है, तब हमारे युवा साथियों को ऐसा लगता है कि अब वे आगे ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
0: नहीं, मैं युवाओं से बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने सपनों को छोटा मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि आपके पास रिसोर्स कम है। शुरुआत करने के लिए परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार मत कीजिए, जो आपके पास है वहीं से शुरू कीजिए। आज टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है लेकिन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जरूरी है हमारी सोच, सीखने की इच्छा और जो ज्यादा देर कोशिश करने की आदत होनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी पहली कोशिश सफल ना हो, दूसरी भी ना हो, लेकिन हर कोशिश आपको पहले से बेहतर बनाएगी।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए कि जो करियर होता है एक दिन में नहीं बनता है लेकिन हर एक दिन एक छोटा लर्निंग आपको अपने करियर के करीब जरूर ले जाता है।
1: जी बिल्कुल,
0: मेरी नजर में युवाओं की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्र नहीं बल्कि यह विश्वास है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और कुछ नया कर सकता हूँ। इसलिए सीखना जरूरी है, सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और शुरुआत करने से कभी मत डरिए।
1: बिल्कुल आकिब जी, जैसा कि आप बहुत अच्छी बातों से हमारे युवा साथियों को अवगत करवा रहे हैं और वे आईटी के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बना सकते हैं ये आप बता ही रहे हैं। अब यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई युवा साथी हमारे छोटे शहर या गांव से है और वे आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से कर सकते हैं?
0: तो मैं युवा साथी से ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप वो छोटे शहर से है तो ये ना सोचे कि वो आईटी के अंदर करियर के लिए उनको बहुत तकलीफ आएगी। क्योंकि मैं अपना बताना चाहूंगा तो मैं भी एक छोटे शहर से आया था और छोटे शहर के अंदर ही मैंने स्टडी करी है, छोटे शहर के अंदर मैंने पढ़ाई करी है, लेकिन ये है कि जब मेरे अंदर इंटरेस्ट जागा और जब मेरा कॉन्फिडेंस जागा तो मैंने पेरेंट्स से बात करी और फिर आगे जाके फिर मैंने अपनी जो मास्टर डिग्री है वो मैंने आगे अपनी बड़े शहर में जाके करी है। लेकिन ये है कि मैंने शुरुआत मेरे छोटे शहर से कर ली थी और अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस बना लिया था कि नहीं मैं कर सकता हूं। लेकिन मेरी सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत बदलाव है। मैं युवाओं को खासतौर पर ये भी कहना चाहूंगा कि आईटी करियर की शुरुआत अगर वो करना चाहते हैं तो बड़े शहर में पैदा होना जरूरी नहीं होता है।
1: बिल्कुल,
0: आज इंटरनेट और ऑनलाइन लर्निंग की वजह से सीखने के रिसोर्स गांव के छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गए हैं। शुरुआत में मोबाइल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से हो सकती है, यूट्यूब ऑनलाइन कोर्सेस है और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म से बहुत सारे जो चार्जेस भी नहीं लगते है, फ्री है। लेकिन सिर्फ वीडियोस मत देखिए, जो सीखे उसे करके देखिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो एक छोटी वेबसाइट बनाइए, डाटा सीख रहे हैं तो अपना छोटा डैशबोर्ड बनाइए, ग्राफिक डिजाइन सीख रहे हैं तो कुछ पोस्टर बनाइए। ये छोटी शुरुआत है आप
1: जी जी।
0: और रिसोर्स तो आज मैं ये नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि पहले के तो चलो ठीक है इतना रिसोर्स ना, लेकिन आज तो AI से लेकर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कोर्सेस है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपको ये चीज सोचने की जरूरत ही नहीं।
1: जी बिल्कुल आकिब जी, आपने सही कहा। और युवा साथियों को जैसा कि आपने बताया कि वे छोटे क्षेत्र से अगर रहते हैं, अगर छोटे क्षेत्र से वो अपनी करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो उनके पास ऐसे ढेर सारे अवसर हैं जो छोटे स्तर पर वो शुरू करके अपना करियर बड़े स्तर पर बना सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: अब मैं यही ये जानना चाहूंगी कि आप अपने अनुभव के हिसाब से अपने काम का एक ऐसा सबसे अच्छा हिस्सा बताइए जो आज भी आपको आगे बढ़ने के लिए, ज्यादा सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
0: ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कशिश जी। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे काम का सबसे अच्छा जो हिस्सा है वो हर दिन कुछ नया सामने आता है, वो मुझे अच्छा लगता है। कभी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, कभी डाटा का इशू होता है,
1: बिल्कुल,
0: कभी कोई नया सिस्टम बनाना होता है और कभी कभी किसी फील्ड को टेक्नोलॉजी समझाना पड़ता है। सबसे अच्छी जो फीलिंग होती है तब होती है जब कोई ऐसी चीज जिसे लेकर लोग परेशान होते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से उसको आसान बनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और मुझे सबसे ज्यादा यही सीखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी तभी मीनिंगफुल है जब वो किसी वास्तविक प्रॉब्लम को सॉल्व करे।
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि आपके माध्यम से ढेर सारी जानकारी आज हमारे युवा साथियों को मिल रही है और हमारे युवा साथी समझ ही पाए होंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं लेकिन आगे बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो करियर है वो उम्र का मोहताज नहीं है और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती। तो युवा साथियों, आपसे हम कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी अगर आईटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जरूर बना सकते हैं, क्योंकि चुनौतियां तो आएंगी लेकिन आगे बढ़ना भी जरूरी है। अब यही आकिब जी, जैसा कि आपके माध्यम से हमारे युवा साथी ढेर सारी जानकारी को प्राप्त कर पाए हैं, तो अब आप अंत में कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं युवाओं के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश एक ही है,

0: अपने आप को सिर्फ एक जॉब के लिए तैयार मत कीजिए, अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए।
1: बिल्कुल।
0: और कशिश जी एक बात और कि सर्टिफिकेट से ज्यादा अपनी क्यूरियोसिटी को मजबूत कीजिए, जॉब से ज्यादा अपनी कैपेबिलिटी को मजबूत कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: और कंपटीशन से ज्यादा अपने कल को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कंपटीशन कोई दूसरा युवा नहीं है, आपकी सबसे बड़ी कंपटीशन आपका कल वाला वर्जन है।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आकिब जी कि आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े और आपने अपना कीमती अमूल्य समय हमारे युवा साथियों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, जैसा कि आज की इस खास बातचीत में हमने जाना कि आईटी केवल कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सीखने, बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करने और अपने हुनर को अवसर में बदलने का एक बड़ा क्षेत्र है। हमारे आईटी एक्सपर्ट ने बताया कि सफलता के लिए केवल डिग्री ही काफी नहीं होती, सीखने की इच्छा, लगातार मेहनत, सही स्किल्स और अनुभव हमें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शुरुआत किसी बड़े शहर से नहीं हुई हो तब भी सपने की कोई सीमा नहीं होती। गांव और छोटे शहर का युवा भी सही जानकारी, डिजिटल साधनों और निरंतर सीखने के साथ आईटी की दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। तो श्रोता साथियों, ये थी हमारी बातचीत और हमारे एक्सपर्ट से बात कर रहे थे हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। आप देख पा रहे हैं कि समय उछला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।

साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज की बातचीत से हमारे युवा श्रोताओं को एक नई दिशा, नई सोच और अपने सपनों को आगे बढ़ाने का हौसला मिला होगा। इसी विश्वास के साथ साथियों, सीखने वाला युवा कभी पीछे नहीं रहता और बदलते समय के साथ चलने वाला युवा अपना भविष्य खुद बनाता है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम युवाओं की आवाज से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: भरपेट भोजन जरूरी है या पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहले हम एक रेडियो नाटक के माध्यम से जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों के लिए पोषण जरूरी है। तो आइए सुनते हैं रेडियो नाटक।
1: अरे कमला बहन, जरा इधर आना तो।
2: हाँ राधा, बोलो इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
1: क्या बताऊं बहन, मेरा बेटा ठीक से खाना ही नहीं खाता। रोटी सब्जी रखो तो मुंह बना लेता है, दाल रखो तो दो चम्मच खाकर उठ जाता है, लेकिन बिस्किट, चिप्स और मीठी चीजें वह तुरंत खा जाता है।
2: राधा, ये तो आजकल के बहुत से बच्चों की आदत हो गई है, लेकिन तुम उसे दिन भर में क्या क्या खिलाती हो?
1: मैं सुबह कभी दूध दे देती हूँ तो कभी बिस्किट देती हूँ। स्कूल जाने से पहले जल्दी जल्दी कुछ खा लेता है। दोपहर में अगर रोटी सब्जी नहीं खाई तो मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, पेट तो किसी न किसी चीज से भर ही जाएगा।
2: बस यही तो बात समझने की है राधा, पेट भरना और शरीर को पोषण मिलना दोनों एक बात नहीं है।
1: अरे, पेट भर गया तो पोषण नहीं मिला, ये कैसी बात हो सकती है?
2: देखो, अगर बच्चा सिर्फ चिप्स, बिस्किट, मिठाई या एक ही तरह की चीजें खाकर पेट भर ले तो उसका पेट तो भर सकता है, लेकिन शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे।
1: यानी कि कहना क्या चाह रही हो आप?
2: यानी कि बच्चों के शरीर को बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, जैसे दाल, दूध, अंडा या दूसरी जो प्रोटीन वाली चीजें होती हैं, वो शरीर को बढ़ाने में मदद करती हैं।
1: बिल्कुल,
2: हरी पत्तेदार सब्जियां, दूसरी पौष्टिक चीजें होती हैं, वो शरीर को ताकत देती हैं। फल, सब्जियां और घर का विविध भोजन बहुत जरूरी है राधा।
1: अच्छा, इसलिए तो कहते हैं कि बच्चों को अलग अलग तरह का खाना खिलाना चाहिए।
2: बिल्कुल, बच्चों का शरीर ही नहीं उसका दिमाग भी तेजी से विकसित हो रहा होता है। अच्छा और संतुलित भोजन उसे खेलने, सीखने, ध्यान लगाने और सक्रिय रहने में मदद करता है।
1: हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा बेटा तो सब्जियाँ देखकर जैसे तैसे ही भाग जाता है।
2: अरे, तो सब्जी को पीछे लेकर मत भागो, धीरे धीरे उसकी आदत बनाओ। बच्चों को डांट कर खाना खिलाने के बजाय अलग अलग तरीके अपना कर भी हम बच्चों को खाना खिला सकते हैं।
1: अच्छा, कैसे?
2: जैसे भोजन को रंग बिरंगा बनाना, घर में खाने को अलग अलग चीजों में शामिल करना, बच्चों को रसोई की छोटी मोटी तैयारी में शामिल करना, और सबसे जरूरी बात, घर के बड़े खुद भी वही स्वस्थ भोजन खाएं, तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को भी वैसे ही आदत लग सकती है।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। अगर हम खुद सब्जी छोड़कर पकौड़े खाएंगे और बच्चे से कहेंगे कि सब्जी खाओ, तो ये तो सही बात नहीं है ना?
2: हाँ बिल्कुल, बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं देखकर।
1: अच्छा, एक बात पूछो कमला बहन।
2: हाँ पूछो राधा।
1: बाजार में इतने सारे हेल्थी ड्रिंक्स आते हैं, क्या बच्चों को रोजाना ऐसी चीजें देना जरूरी है?
2: हाँ राधा, जरूरी हो ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर घर का संतुलित और विविध भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर और किसी बच्चे को विशेष पोषण संबंधी जरूरत है या कमी हो, तो हमें डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेकर उनके अनुसार विशेष उत्पाद भी हम दे सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब सिर्फ विज्ञापन देखकर कोई चीज खरीद लेना जरूरी नहीं होता?
2: बिल्कुल नहीं, पहले बच्चे की जरूरत हमें समझनी चाहिए।
1: और कम खर्च वाले परिवारों का क्या? हर कोई महंगे फल या स्वास्थ्य जो पेय पदार्थ होते हैं वो नहीं खरीद सकता है ना?
2: अरे राधा, स्वस्थ भोजन का मतलब हमेशा महंगा भोजन नहीं होता है। हमारे घर और गांव में मिलने वाली दालें, अनाज, मौसमी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, स्थानीय फल और दूसरे जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ होते हैं, वो भी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं।
1: अच्छा, यानी कि हमारे बागड़ क्षेत्र और हमारे आसपास के ग्रामीण इलाकों में जो भी स्थानीय चीजें उपलब्ध हैं, उनसे बच्चों को अच्छा भोजन दिया जा सकता है।
2: बिल्कुल राधा, हमें हमारे स्थानीय और खाद्य पदार्थों को हमारे भोजन में शामिल करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ये हमारे लिए कितने आवश्यक हैं।
1: बिल्कुल कमला बहन, एक बात तो मैं आज समझ गई कि बच्चे को सिर्फ खिलाना ही नहीं, सही चीज खिलाना भी जरूरी होता है।
2: हाँ राधा, और समय पर खिलाना भी जरूरी है। नाश्ता छोड़ना, बार बार खाना टालना, सिर्फ पसंद की चीजें देना अच्छी आदत नहीं है। बच्चों को नियमित समय पर भोजन की आदत डलवा

0: थाली भी हमें चाहिए।
1: बिल्कुल, तो आज से मैं ध्यान रखूंगी कि बच्चे की थाली में सिर्फ खाना ही नहीं पोषण भी होगा।
0: बस यही सबसे जरूरी समझ है। स्वस्थ बच्चा बनने की शुरुआत किसी महंगी दुकान से नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई से होती है।
1: बिल्कुल, तुमने सही कहा। चलो फिर आज से घर में एक नई शुरुआत करते हैं।
0: हाँ राधा, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ आदत और स्वस्थ बचपन की शुरुआत।
2: श्रोता साथियों, आपने सुना कि बच्चों के लिए सिर्फ पेट भरना पर्याप्त नहीं है, उनके शरीर और दिमाग के विकास के लिए संतुलित और विविध भोजन भी जरूरी है। अब आइए इसी विषय को और विस्तार से समझते हैं हमारे विशेष अतिथि के साथ। हमने बच्चों के पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर विशेषज्ञों से बातचीत की है, तो आइए सुनते हैं उनकी बातों को, फिर हम हमारी बातें आगे जारी रखेंगे।
3: मैम नमस्कार।
4: नमस्कार
3: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
4: धन्यवाद
3: मैम। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
4: मेरा नाम डॉक्टर रश्मि दवे है और मैं एक होम साइंटिस्ट के पद पर कृषि विज्ञान केंद्र बोरवड बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ और पिछले 23 वर्षों से मुझे इस वागड़ क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है। और मेरी जो एजुकेशन है सारी वो उदयपुर से हुई है और यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उसी समय से मैं यहाँ पे वागड़ में कार्य कर रही हूँ।
3: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम हम देख रहे हैं कि पोषण माह चल रहा है और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि विज्ञान की दृष्टि से पोषण क्या है और बच्चों के लिए संतुलित पोषण का क्या अर्थ है।
4: देखिए, सरल भाषा में अगर कहा जाए तो पोषण का मतलब होता है हमारे शरीर को भोजन के वो सभी जरूरी तत्व मिले जिनकी उसे स्वस्थ रहने, बढ़ने और काम करने की जरूरत होती है।
3: बिल्कुल,
4: तो बच्चों के मामले में अगर हम देखते हैं तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनका शरीर और दिमाग जो है वो लगातार विकसित हो रहा होता है। संतुलित भोजन कहने के लिए कहते हैं हम कि बच्चों को भी संतुलित भोजन देना चाहिए, हमें भी संतुलित भोजन करना चाहिए। तो संतुलित भोजन का मतलब केवल रोटी सब्जी खिलाना नहीं होता है या पेट भर के खाना नहीं होता है, बल्कि अलग अलग प्रकार का भोजन हमारी पोषण थाली में सम्मिलित हो, जैसे अनाज भी हो, दालें हो, सब्जियां हो, फल फूल हो, दूध हो, दूध से बने पदार्थ हो या शरीर के लिए फायदेमंद वसा हो। तो यानी जितनी हमारी थाली रंग बिरंगी और विविध होगी उतना ही पोषण मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी।
3: बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे के शरीर और दिमाग का विकास तेजी से होता है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास उसके भोजन पर किस तरीके से निर्भर करता है।
4: बिल्कुल, बचपन में शरीर की लंबाई बढ़ रही होती है, हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं, मांसपेशियां विकसित हो रही होती हैं और साथ ही दिमाग भी तेजी से विकसित हो रहा होता है।
3: बिल्कुल,
4: अगर इस समय बच्चे को सही और पर्याप्त पोषण नहीं मिले तो उसके शारीरिक विकास पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अच्छा पोषण जो होता है वो बच्चे को ऊर्जा देता है जिससे वो सक्रिय रहता है, स्कूल में अपना ध्यान लगा पाता है, खेल कूद में अच्छे से भाग ले पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के भोजन का असर न केवल उसके शरीर पर पड़ता है बल्कि उसके सोचने, समझने और सीखने की क्षमता पर भी पड़ता है।
3: बिल्कुल, तो मैम हम अक्सर प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन के बारे में सुनते हैं, तो बच्चों के शरीर में इन तीनों पोषक तत्वों की क्या भूमिका है।
4: जैसे सबसे पहले आपने जैसे पूछा कि प्रोटीन शब्द की बात कही, तो प्रोटीन की बात करें तो यह बच्चे के शरीर की वृद्धि और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है।
3: बिल्कुल,
4: इसको हम शरीर बनाने वाला पोषक तत्व भी कह सकते हैं जिससे शरीर की बढ़त होती है, विकास होता है। इनमें जैसे हम दाल हैं, चना, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, अंडा, ये हम इसके प्रोटीन के अच्छे स्रोत मानते हैं। इसी तरह से कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में काफी मदद करता है। इसके लिए हम दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, रागी और तिल, इनको हम अच्छे स्रोतों के रूप में काम में ले सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: और आयरन की बात करी आपने तो आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, इसकी कमी से कमजोरी और एनीमिया हो सकता है।
3: बिल्कुल,
4: और इसके लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, दालें, चना, गुड़ और बाजरा जैसे खाद्य पदार्थों को अपने अगर आहार में शामिल करें तो ये आयरन के एक अच्छे स्रोत हो सकते हैं।
3: बिल्कुल, लेकिन मैम हम देखते हैं कि कई माता पिता का मानना है कि बच्चा भरपेट खाना खा रहा है तो उसका पोषण अच्छा है, तो क्या केवल पेट भरना ही पर्याप्त है या भोजन में पोषक तत्वों का होना भी उतना ही जरूरी है?
4: देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि पेट भरकर भोजन करना शरीर को पोषण देगा। पेट भरना और शरीर को पूरा पोषण मिलना, ये दोनों बिल्कुल विपरीत बातें होती है। मान लीजिए कि बच्चा रोज भरपेट रोटी खा रहा है, चावल खा रहा है या कोई एक ही चीज खाता है, उसका पेट जरूर भर जाएगा, लेकिन उसे जो पोषक तत्व चाहिए जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, आयरन है, दूसरे जरूरी पोषक तत्व, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो उसका पोषण पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए हमको केवल ये नहीं देखना है कि बच्चा कितना खा रहा है, बल्कि ये भी देखना है कि वो क्या खा रहा है।
3: बिल्कुल मैम, अगर यही अब हम बात करें कि बच्चे के भोजन में लंबे समय तक जरूरी पोषक तत्वों की कमी रहे तो उसके शरीर और दिमाग पर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकते हैं?
4: जैसा अभी हमने पहले भी बात करी कि पोषण का बहुत बड़ा असर जो है बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पे भी होता है। तो अगर लंबे समय तक पोषण की कमी रहती है तो बच्चे की लंबाई है, वजन है, उसका विकास प्रभावित हो सकता है। हम कितनी बार देखते हैं क्लास में बच्चा सबसे हाइट में छोटा रह गया है या बहुत दुबला पतला है, तो ये उसके पोषण का ही संबंध होता है। बच्चा कमजोरी महसूस कर सकता है, जल्दी थक सकता है और बार बार बीमार भी पड़ सकता है। ये ऐसा हम अपने घरों में भी रोज देखते हैं कि कोई बच्चे हैं, खेल खेल रहे हैं तो उसमें कुछ बच्चे तो एकदम फुर्ती के साथ भाग लेते हैं लेकिन कुछ जल्दी थक जाते हैं, या स्कूल में बहुत बार एब्सेंट रहता है बच्चा क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ सकता है। तो आयरन जैसी कमी अगर है बच्चों में तो एनीमिया हो सकता है। पोषण की गंभीर कमी का असर बच्चे की पढ़ाई पे भी लगता है, ध्यान लगाने की उसकी क्षमता कम हो जाती है और उसका मानसिक विकास भी कमजोर पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि बच्चों के भोजन में शुरू से ही विविधता रखी जाए।
3: बिल्कुल, तो क्या मैम अलग अलग उम्र के बच्चों के भोजन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
4: देखिए कि बच्चे की उम्र के साथ साथ मैं तो ये बताऊंगी कि पोषण का जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति के पैदा होने से लेके वृद्धावस्था तक, हर अवस्था का जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति के पैदा होने से लेके वृद्धावस्था तक हर अवस्था में उसको अलग पोषण की जरूरत होती है। यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष का पोषण भी अलग होता है।
3: बिल्कुल,
4: साथ ही गर्भवती उसको अलग पोषण चाहिए। इसी तरह से बच्चों में जब बिल्कुल 6 महीने तक के बच्चे हैं, उसके बाद थोड़े से 5 साल तक के, 6 वर्ष तक के बच्चे हैं तो उनका छोटा पेट होता है, तो इसलिए उनको कम मात्रा में जल्दी और धीरे धीरे पौष्टिक भोजन बार बार देना पड़ सकता है। जैसे स्कूल जाना जब बच्चे शुरू करते हैं तो उनको पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत होती है क्योंकि वो पढ़ाई भी करेंगे, साथ साथ खेल कूद भी करेंगे, उसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, उन गतिविधियों को भी करते हैं, है ना। और फिर किशोरावस्था, जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर की तेजी से बढ़ने वाली अवस्था होती है, इस समय में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हर उम्र के अनुसार बच्चे के भोजन और पोषण को हमें मैनेज करना चाहिए।
3: बिल्कुल, यही मैम अब मैं जानना चाहूंगी कि पोषण, पढ़ाई, खेल का एक दूसरे से क्या संबंध है?
4: देखिए, जैसे पोषण बच्चे को ऊर्जा देता है, जब बच्चा सही भोजन करता है तो उसका शरीर सक्रिय रहेगा, वह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेगा, खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करेगा, सभी गतिविधियों में वो बेहतर तरीके से भाग ले सकता है। पौष्टिक भोजन से शरीर तो मजबूत बनता ही है, साथ ही पर्याप्त ऊर्जा भी मिलती है। अगर बच्चा लगातार कमजोरी या पोषण की कमी को महसूस करता है तो वो जल्दी थक जाता है, उसकी सक्रियता कम हो जाती है। यानी कि भोजन से ही पढ़ाई, खेल तीनों एक दूसरे से पर्याप्त रूप से जुड़े हुए हैं।
3: बिल्कुल, यही अब मैं जानना चाहूंगी मैम कि आज बाजार में कई तरीके के पैकेट्स वाली चीजें उपलब्ध हैं, हेल्थ ड्रिंक हो गई, न्यूट्रिशन ड्रिंक हो गई, तो इनका सेवन बच्चों के लिए जरूरी है?
4: देखिए, हर बच्चे के लिए हेल्थ ड्रिंक जरूरी नहीं होता है। अगर बच्चा सामान्य रूप से स्वस्थ है और उसे घर का संतुलित और विविध भोजन मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है, तो सारी उसकी पोषण संबंधी जरूरतें जो है वो घर के भोजन से पूरी हो सकती हैं। केवल कितनी बार हम देखते हैं कि बच्चे टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स या विज्ञापन देख के ये सोच लेते हैं कि अगर हम ये पैकेट वाली चीज खाएंगे या पिएंगे तो इससे हमें अच्छा पेट भी भर जाएगा और पोषण मिल जाएगा, और माएं भी कितनी बार दिला भी देती हैं, लेकिन कभी भी हमें विज्ञापन देखकर कोई भी पैकेट वाला उत्पाद बच्चे के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चे में किसी पोषक तत्व की कमी है और डॉक्टर ने बताया है तो ही हम किसी सप्लीमेंट को दें, अदरवाइज नहीं।
3: बिल्कुल, यही अब मैं जानना चाहूंगी मैम कि प्राकृतिक और संतुलित भोजन की तुलना में सप्लीमेंट और पैकेट्स वाले उत्पादों की जरूरत कब पड़ती है।
4: देखिए, अगर बच्चा कुपोषित है

0: वो सामान्य बच्चों से कुछ अलग है और आपने उनको अगर डॉक्टरी जांच कराई है उसमें किसी भी तत्व की कमी आती है तब आपको कोई भी ऐसा हेल्थ ड्रिंक है या प्रोटीन पाउडर है या कोई और जो उसके पोषण की जरूरतों को पूरा कर सके इस तरह का सप्लीमेंट देना चाहिए। वरना घर के जो हमारा अच्छा ताजा खाना है या हमारा जो पुराने जमाने में जो हम खाना खाते थे उन्हीं से बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो जाती है। ये है कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें जो बच्चों के टिफिन में जो हम चीजें रख रहे हैं, कितनी बार जो माताएं होती है वो जल्दबाजी की वजह से कभी अचार रोटी या कुछ सॉस और ब्रेड इस तरह की चीजें बच्चों के टिफिन में दे देती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सारी सब्जियों को शामिल करके कभी कोई उपमा या कभी कोई उत्तपम या कोई पराठा जिसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के उन्हें बना के ताकि उनकी बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो जाए।
1: बिल्कुल, यही मैं जानना चाहूंगी आपसे क्योंकि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता साथियों को दे रही हैं। तो बांसवाड़ा और आसपास के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के परिवार के लिए आपकी विशेष सलाह क्या होगी? हमारे यहाँ उपलब्ध स्थानीय खाद्य पदार्थों को बच्चों के भोजन में हम किस तरीके से शामिल कर सकते हैं?
0: देखिए, हमारे जो अगर हम वागड़ की बात करते हैं तो वागड़ क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यहाँ पे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जबकि वो बहुत पौष्टिक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन आप अगर घरों में जाकर देखेंगे तो वहाँ के लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हो सकता है कि या तो उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है और क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से यहाँ पे सोयाबीन का प्रसंस्करण नहीं हो पा रहा है। अगर सोयाबीन जैसी फसल का प्रसंस्करण करके अगर बच्चों के भोजन में उसको शामिल किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ मक्का काफी उत्पादन हो रहा है तो मक्का को भी हम भोजन में शामिल करें, विभिन्न दालों को भोजन में शामिल करें, चना होता है यहाँ पे तो चने को शामिल करें और तिल है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, इन सभी को अगर हम अपने भोजन में शामिल करें तो बच्चों को मतलब अवश्य रूप से पोषण की आवश्यकताओं को उनका पूरा कराया जा सकता है। साथ ही में घर की जो महिलाएं हैं माएं हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने घर के आंगन में किचन गार्डन बनाएं या पोषक वाटिका बनाएं जिसमें ताजी सब्जियां भी उपलब्ध हो सके और फल भी उपलब्ध हो सके तो इससे बेहतर विकल्प पोषण के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हमको स्थानीय और पारंपरिक भोजन को कम नहीं समझना चाहिए। कई बार हमारे जो पुराने गांवों में पारंपरिक खाद्य पदार्थ बनते थे वे काफी पोषण से भरपूर होते थे। जिन दिनों हम गुड़ का उपयोग करते थे, चीनी का कम करते थे, उन दिनों जो मिठाई बनाई जाती थी, उन दिनों जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते थे वो काफी हद तक हमारे लिए बहुत ही स्वस्थ भोजन के विकल्प थे और उनको हमें फिर से शामिल करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो मैम जैसा कि आपने कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों को दी है, यही अंत में आप उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चे को स्वस्थ, सक्रिय और पढ़ाई में बेहतर बनाने के लिए आज से कुछ बदलाव कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सभी माता पिता से यही कहना चाहूंगी, बच्चे का स्वास्थ्य किसी भी महंगे हेल्थ ड्रिंक या किसी भी महंगे खाद्य पदार्थ से नहीं बनता है। स्वस्थ बच्चा बनाने के लिए रोज की छोटी छोटी आदतों में बदलाव जरूरी है। जैसे कितनी बार होता है कि बच्चा अपनी ही पसंद का खाना खाता है और माँ बाप उसको उसकी ही पसंद का खाना दे देते हैं, ये आदत हमें थोड़ी सी बदलनी होगी। बच्चे को घर का बना विविध और संतुलित भोजन दें, फल और सब्जियों की आदत डालें, नाश्ता नियमित करवाएं और खेलने कूदने के लिए पर्याप्त समय दें। सबसे जरूरी बात है कि बच्चे को भोजन के लिए मजबूर नहीं करें बल्कि घर में स्वस्थ भोजन का अच्छा माहौल बनाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे वही करते हैं जो अपने बड़े को देख के सीखते हैं। तो बच्चों को दिया गया अच्छा पोषण उसके स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और उज्जवल भविष्य की नींव बनेगा, तो इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपने मुझे इसका अवसर दिया उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता साथियों, आज की इस विशेष चर्चा और छोटी सी कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ को मिली है कि बच्चों का अच्छा भविष्य उनकी थाली से भी जुड़ा हुआ है। बच्चों को सिर्फ उनकी पसंद की चीजें देकर खुश करना ही काफी नहीं है, उनके रोज के थाली में अलग अलग प्रकार का पौष्टिक भोजन, नियमित खाने की आदत और परिवार का सही मार्गदर्शन भी जरूरी है। याद रखिए कि पोषण की शुरुआत महंगे उत्पादों से नहीं बल्कि सही जानकारी, घर में उपलब्ध अलग अलग पदार्थों के समझदारी से उपयोग से हो सकती है। हमारे स्थानीय अनाज, दालें, मौसमी सब्जियां, फल और पारंपरिक खाद्य पदार्थ बच्चों के बेहतर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए हम सभी बच्चों की थाली रंग बिरंगी बनाएंगे, उन्हें स्वस्थ भोजन की आदत सिखाएंगे और स्वस्थ बचपन की मजबूत नींव तैयार करेंगे।
3: अटकन बटकन दही चटाकन चूं चूं भों भों म्याओ अटकन बटकन दही चटाकन चूं चूं भों भों म्याओ एक पहेली बड़े मजे की पूछूं तुम बतलाओ।
4: बोलो रिकी, बतलाओगे तो सुनो।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाइयों ने बोनो जेवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसलो मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियों बोनों नो रिश्तो है जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नो भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नो राम राम। किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बहनों आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि आपणे बीजनी ओळखण हरते करो ने एने साथे आपणे जे बीजने ओळखीने एनानी सफाई एना साथे एनु संरक्षण हरते करी शका ने भंडारण करवानी कई कई एवी विधि अहीं जे आपणने ध्यान में होवी सुए। तो आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक की नाकानी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरावी दा गीत ने मोरे करा आपणी वाते। तो बायन बोनो आप हमबरता रहेशु आपणो रेडियो आपणी वाते वाकड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બેન્ડમનું ગીત તો આઈશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ બોનું અમે આપને ગીત કે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે આપણે બીજની ઓળખણ હરતે કરો અને એને સાથે આપણે જે બીજ હે એનાનું ભંડારણ કરવાની કઈ કઈ વિધિ હે જે આપણને ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ. તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી માંગીલાલજી. તો સબ તકી પહેલા આપણે હમરી લણાની વાતે મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારી કાર્યક્રમ સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે વાતચીત કા વિષય હૈ દેશી બીજો કા સંરક્ષણ બીજ સ્વરાજ કો લેકર.
1: જી.
0: તો આપ સબસે પહેલે હમે યહી બતાઈએ કે બીજ સ્વરાજ કા મહત્વ ક્યા હૈ.
1: देखिए जब हम बात करते हैं बीज स्वराज की, तो बीज स्वराज का ये है कि हमारे जो समुदाय है उनके पास जो भी हमारा पारंपरिक बीज है वो उपलब्ध होना चाहिए. हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना.
0: बिल्कुल.
1: तो यही है कि जो भी फसलें या जो भी फल सब्जियां हम लोग करते हैं उनके बीज हमारे पास होने चाहिए और वो उतनी मात्रा में होने चाहिए कि हमें किसी से खरीदना ना पड़े. तो इसकी दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे जो बीज है वो बहुत सुरक्षित होते हैं, फसल जो है बहुत अच्छे से होती है उनकी, तो क्यों ना हम लोग उन्हीं बीजों को अपनाएं, उन्हीं बीजों से हमारी खेतीबाड़ी को करें. तो यही जो है कि हमारी निर्भरता हम पर हो ना कि दूसरों पर.
0: बिल्कुल. तो सर स्थानीय और देसी बीजों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं?
1: तो अगर हम स्थानीय बीजों की बात करते हैं या देसी बीजों की हम बात करते हैं या परंपरागत बीजों की बात करते हैं, तो हमारे समुदाय में कई सालों से हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो अच्छे से उनको पहचान पाते थे और उनके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे सबसे पहले तो कि कौन सी जो फसल है वो हमारे क्षेत्र में होती है तो उसका बीज आपको सुरक्षित रखना. दूसरा है कि जैसे हम बीजों का जब हम बात करते चयन की या पहचान की, तो हमारी फसल खड़ी है खेत में, तो खेत में फसल खड़ी है तो जैसे मक्का है तो मक्का के अगर अच्छे बूटे हैं तो उनकी पहचान करना, उनके आप एक धागा बांध सकते हो या उनको कुछ ऐसा टैग कर सकते हैं कि ये जो है हम बीज के लिए रखेंगे.
0: बिल्कुल.
1: दूसरा है कि कौन सा जो बीज है उसको कौन सी मिट्टी के लिए अच्छे से जो पैदावार होगी या कौन सी मिट्टी के लिए कौन सा बीज है वो सही है, उसकी पहचान करते हुए उस खेत में उस बीज को लगाना. तो इस तरह से कर सकते हैं. दूसरा है कि जैसे बहुत सारे बीज ऐसे जिनमें कीट लग जाते हैं, लेकिन हमें जब बीज का पहचान करनी है या उसको रखना है या संरक्षित करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से बीज है जिनको हमें रखना है, तो उसके आधार पर करें. दूसरा है कि जब बीज की हम पहचान करते हैं तो हमारे पास में या बहुत सारे फसलें हम करते हैं तो बीज के लिए अच्छे पौधों का चयन करना. आप अच्छे पौधे कर सकते हो, चाहे वो सब्जियों के हो, चाहे वो आपके फलों के हो, चाहे आपकी फसल के हो.
0: बिल्कुल.
1: तो उस तरह से आप उसको कर सकते हैं. दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग पुरुष है या महिलाएं हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको कैसे उनका चयन करना है.
0: बिल्कुल.
1: तो चयन करने के लिए हमें कोई बाहर से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है. हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी प्रथाएं हैं और जो हमारे अभ्यास थे वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको हमें वापस से अपनाने की जरूरत है.
0: बिल्कुल. तो सर जैसा कि आपने बताया कि हम स्थानीय और देसी बीज की पहचान कैसे कर सकते हैं, यही अच्छे पौधे से बीज का चयन कैसे करें?
1: देखिए जैसे हम अच्छे पौधे की हम बात करते हैं तो जब अच्छा पौधा होगा तो उसका बीज भी अच्छा होगा और वो पौधा है वो आपके सामने ही वो तैयार हुआ है. जैसे कि उसका वो कितना स्वच्छ रहा पूरा सीजन में, जैसे पूरा बारिश का सीजन है तो बारिश में पौधा किस तरह से उसकी ग्रोथ हुई, किस तरह से वो सुरक्षित रहा, कितना मजबूत रहा, तो वो एक अच्छा पौधा है अगर वो सही से आपकी परिस्थितियों के अनुसार खड़ा है.
0: बिल्कुल.
1: और अच्छी पैदावार भी उससे हो रही है. दूसरी है कि एक होता है कि जिसकी वृद्धि अच्छी होती है उस पौधे की, एक होता है जिसकी वृद्धि कम होती है. तो जो अच्छी वृद्धि वाला पौधा है तो उसको हम चयन करेंगे. इसी तरह जो है हमारी जो स्थानीय परिस्थितियां हैं या पर्यावरण जैसे अनुकूल की हम बात करते हैं तो उसके अनुसार अच्छा कौन सा ग्रोथ कर रहा है या अच्छे से कौन सा पैदावार देने के लिए तैयार हुआ है. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं होते, तो उस तरह का उस पौधे का चयन करना, उसकी गुणवत्ता वाली जैसे फल है, बालियां हैं, दाने हैं या फलियां हैं, वो अगर अच्छी गुणवत्ता के साथ में अगर वो लगी है तो हमें उनको ही चयन करना चाहिए ताकि वो हमें पता रहे कि ये आगे जाकर भी अच्छी पैदावार देगी। दूसरा ये है कि एक अच्छे पौधे की पहचान है कि समय के अनुसार कि कितने समय में वो तैयार हुआ है, कब उसको लगाया हमने, कब उसका जो प्रोडक्शन निकला, तो उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पता होना चाहिए कि ये पौधा है इस निश्चित समय में ये पैदावार देता है, तो उस तरह से हमें दिखाई देना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो यही सर बात आती है कि बीज और पौधे का जब हम चयन कर लेते हैं तो उसकी सफाई हमें कैसे करनी है।
1: देखिए, जब हम पौधों की चयन किया या हमने बीजों का चयन किया या मक्के का भुट्टा है उसका हमने चयन किया, तो सबसे पहले है कि उसको जैसे हम एक तो साफ जगह पे उसको आप फैला कर रखें कि जैसे सूखने के लिए हम फैलाते हैं तो वहां पे गंदगी ना हो, एक अच्छी जगह साफ सुथरी जगह पे उसको फैलाए ताकि उसके आसपास किसी प्रकार का कोई रोग या कुछ फफूंद जैसी बीमारियां ना आए।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा है कि जब हम बीज को फैलाते हैं तो दूर दूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम ऊपर नीचे ढेर लगा देते हैं तो ढेर में वो बीज खराब हो सकता है, तो वो हम ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो रोग अगर किसी बीज में है तो उसको आपको अलग करना चाहिए तुरंत, नहीं तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे धीरे अन्य बीजों पर भी

0: जो कपड़ा है या मोटी चटाई उस पर फैलाने से वो नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से रखे। दूसरा, जब बीज को जब आप तैयार कर रहे हो, उसकी देख रेख कर रहे हो, तो उसको समय समय पर उसको पलटते रहें।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा नहीं है कि उसको आप पलटे नहीं, उसको पलटते रहें। दूसरा है कि जो बारिश के समय जो नमी है उससे बचा कर रखिए आप। हो सकता है कि आपने जहाँ बीज फैला रखा है वह ज्यादा नमी हो जाए, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पूरी तरह से सूखने के बाद में जो अगला प्रोसेस है वो होता है हमारा भंडारण।
1: बिल्कुल। तो सर, बीज को सुरक्षित रखने की जो परंपरागत विधियां हैं वो क्या क्या हैं?
0: जैसे हम परंपरागत विधियों की हम बात करते हैं, तो देखिए हमारे जो मिट्टी के घड़े हैं, तो मिट्टी के घड़ों में हम रखते हैं, मटके हैं या बांस की टोकरी की हम बात करते हैं, लकड़ी के बर्तन हैं या कपड़े की थैलियां हैं, इसमें हम सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इससे पहले की जो प्रक्रिया वो होती है कि बीज अच्छे से सूख गया, आपने उसको निकाला, तो उसका सबसे पहला जो उपाय होगा वो आप उसका उपचार करें। क्योंकि हमारी पारंपरिक विधियां हैं जो बीज उपचार के बहुत कारगर है, जिसमें आप नीम के पत्तों की हम बात करते हैं, या आप जो है जैसे सब्जियों के फल के बीज है तो हमारे जो सागवान या जिसके पत्ते होते हैं उन पत्तों के चिपका देना है, राख उसमें मिला देना है। तो ये जो विधियां हैं उस करने के बाद में फिर आप उसका भंडारण करें। जैसे हमेशा हम बीज रखते हैं तो जो मटका होता है उसमें राख और नीम के पत्तों के साथ मिला के उसमें रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है। इसके साथ में अगर आप एक नई विधि की हम बात करते हैं, तो होता क्या है कि जब बीज आप सुरक्षित कर रहे हो तो मटका होता है जो बीज और सब भरने के बाद में उस मटके में एक दिया जला दो आप तेल का और उसको बंद कर दो, तो जितना उसके अंदर ऑक्सीजन होगा तब तक वो दिया जलेगा, तो उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो आपका बीज और ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह की जो हमारे पारंपरिक विधियां हैं उनसे हम बीज को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। यही सर, अब बात आती है बीज के अंकुरण की जांच की, तो वो किसान भाई कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, हम बात करते हैं कि बीज बोने से पहले उसका अंकुरण क्षमता का जांच करना उपयोगी होता है। इसके लिए आप क्या करें, कुछ बीज ले लें आप, गीला कपड़ा है तो गीले कपड़े में या बोरी जो होती है उसके अंदर जो है उसकी नमी के साथ आप उन बीजों को देख सकते हैं। तो आप जब उस कपड़े में लपेट कर उसको गीला करके आप रख देंगे, या किसी बर्तन में आप रखोगे, या बर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिला के आपने रख दिया, या फिर आपने पेपर में रख दिया, तो उससे क्या होगा कि आपने अगर 100 बीज रखे हैं तो 100 में से कितने बीज अंकुरित हुए, तो आपको आइडिया होगा कि मेरे जो बीज है उसमें इतने प्रतिशत, 100 में से 90, 95, 80% बीज जो है अंकुरित हुआ। तो आपका जो भरोसा है वो काफी पुख्ता हो जाता है कि ये जो मेरा बीज है वो काफी अच्छी मात्रा का है, अच्छा है, अब मैं इसको बो सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो ये हमारे लिए कारगर होता है। अगर हम उसका परीक्षण नहीं करेंगे या नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे बीज उगते नहीं है, और उगते नहीं है तो फिर किसान के ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ जाता है, बीज दोबारा लाना पड़ता है, बुआई करनी पड़ती है, तो मेहनत और पूंजी दोनों खर्चा का संभावना ही रहती है।
1: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने बताया कि बीज स्वराज क्या है और किस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को बीजों की पहचान करनी चाहिए, अच्छे बीजों का चयन कैसे करें, साथ ही किस तरीके से वो उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, तो अंत में आप हमारे जो समुदाय साथी हैं उन्हें इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोतागणों को और समुदाय के साथियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारा जो पारंपरिक बीज है वो हमारे आंखों के सामने पैदा होता है और उस पे हमारा भरोसा है वो बहुत होता है, तो हमें अपना बीज जो है वो सुरक्षित करना चाहिए और अपना बीज है जो अपने खेतों में लगाना चाहिए, ताकि आर्थिक बोझ ना बढ़े और हमारा विश्वास है वो हमारे बीजों पर बना रहे।
1: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी, धन्यवाद।
1: जेम की भाई बोनो अपने अपने व्यास में मांगीलाल जी जुड़े तक कहा था ने इन्हें माध्यम तक की अपने घना कनी वातन ने साड़ियों। आशा करो हो कि यह हंगरी बातें आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थे गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: मारू नाम गिल्ली है ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही हती, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है। तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नू दूध ज पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने काहे भी खवड़ावंगा तो इन्हे दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानु दूधस पीवू है।
0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
3: जागृति बुन आपे कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है।
4: नाना अंजलि बुन हूँ था का।
3: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: मु अणी माटी में जन्मी हूँ, अणी माटी तकीस जानी जाऊं हूँ। मैं खेत हंबारिया बीज बोया, मैं फसल बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जन्म माते मारो अधिकार केम नथी। सूरी जन्म तकीस हकदार है, कानूने आ वात मानी है। न पण्या पूटे एनो हक कोई ले सके, न रिवाज अन सच ने बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक इन्हें पहचान।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है तकनीकी और नवाचार से गांव की नई तस्वीर को लेकर।
0: बिल्कुल।
1: कभी कभी गांव की पहचान कच्ची पगडंडियों, बैलगाड़ी, लालटेन और खेतों में मेहनत करते किसान से होती है। आज वही गांव धीरे धीरे बदल रहा है। हाथ में स्मार्टफोन है, खेत में नई तकनीक है, घर की छत पर सौर ऊर्जा है और गांव का युवा दुनिया की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर रहा है। अंजलि, तकनीक केवल शहरों की सुविधा नहीं है बल्कि गाँव के विकास की नई ताकत भी बन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और आज जब तकनीक के साथ गांव के लोगों की अपनी समझ, अनुभव और रचनात्मक सोच जुड़ती है तो जन्म होता है नवाचार का।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे तकनीकी और नवाचार से गांव की नई तस्वीर को लेकर। अंजलि, गांव की नई तस्वीर केवल बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं बनती। एक किसान द्वारा पानी बचाने का नया तरीका अपनाना, किसी युवा द्वारा स्थानीय उत्पाद को ऑनलाइन बाजार तक पहुंचाना, बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था करना या पंचायत द्वारा तकनीक के माध्यम से काम में पारदर्शिता लाना, ये सभी नवाचार है। आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तकनीक गांव में आए लेकिन गांव की जरूरत के अनुसार आए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो यही अब बात आती है खेती में तकनीक की नई शुरुआत हम कैसे करें।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, गांव की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार खेती है, इसलिए गांव के बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर खेतों में दिखाई दे सकती है। आज किसान मोबाइल के माध्यम से मौसम की जानकारी, मंडी भाव, फसल संबंधित सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: भारत में डिजिटल कृषि से जुड़े प्रयासों में किसान की पहचान, फसल संबंधित डिजिटल जानकारी और निर्णय लेने में मदद करने वाली प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तकनीक किसान को यह समझने में मदद करती है श्रोता साथियों कि कब बुवाई करनी है, खेत में कितना पानी देना है, कौन सी फसल के लिए कौन सा मौसम बेहतर है और बाजार में उसकी उपज की क्या स्थिति है। इससे हम कह सकते हैं कि खेत केवल अनुभव पर निर्भर रहने के बजाय अनुभव और वैज्ञानिक जानकारी के मेल से आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि ये तो हमने खेती में तकनीक की नई शुरुआत हम किस तरह से करें ये हमारे श्रोता साथियों को बताया, यही पानी बचाने में नवाचार किस तरह से हमें करना है इसको लेकर हम बात करें तो गांव की खुशहाली सीधे पानी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ पहले खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी बहा दिया जाता था वहीं अब हम ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, वर्षा जल संग्रह और जल मापन जैसी तकनीकों से पानी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। गांव में छोटे छोटे जल स्रोतों की निगरानी भी तकनीक से की जा सकती है। सेंसर, डिजिटल प्रणालियों का उपयोग जल की स्थिति पर नजर रखने के लिए किया जाता है। श्रोताओं, ग्रामीण विकास से जुड़ी तकनीकी पहलों में जल निगरानी के लिए कई तकनीकों का उल्लेख भी किया गया है। लेकिन तकनीक से भी बड़ा नवाचार है पानी को व्यर्थ न जाने देना। हर बूंद की कीमत समझने वाला गांव ही भविष्य का मजबूत गांव होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, यही अब बात आती है सौर ऊर्जा से रोशन गांव की।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, गांव में बिजली की जरूरत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सौर ऊर्जा एक उपयोगी विकल्प बन सकती है। घर की छत पर सोलर पैनल, सौर स्ट्रीट लाइट, सौर पंप और छोटे सौर उपकरण गांव के जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि गांव की गलियां रात में और सौर ऊर्जा से रोशन हो, किसान सौर पंप से खेत की सिंचाई करे, सामुदायिक भवन अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा स्वयं तैयार करे। यह केवल बिजली की बचत नहीं होगी जागृति जी, बल्कि गांव को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम होगा।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ डिजिटल शिक्षा से नए रास्ते खुलेंगे इसको लेकर हम बात करें तो शिक्षा किसी भी गांव के भविष्य की नींव होती है। आज हम देखते हैं कि बच्चे केवल अपनी किताब तक सीमित नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इंटरनेट, डिजिटल कक्षाएं, शैक्षणिक वीडियो और ऑनलाइन सामग्री बच्चों के सीखने के अवसर को बढ़ा रही है। गांव का बच्चा अपने गांव में रहते हुए भी देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर रहा है। शिक्षक भी डिजिटल सामग्री का उपयोग करके कठिन विषयों को सरल तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है श्रोताओ, तकनीक शिक्षक का विकल्प नहीं शिक्षक की सहयोगी बने। बच्चों को केवल मोबाइल चलाना नहीं बल्कि मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग करना सिखाना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर आज बातचीत कर रहे हैं, ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहें।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं तकनीकी और नवाचार से गांव की नई तस्वीर को लेकर, जिसमें हमने जागृति जी ढेर सारी बातों को जाना, यहीं अब बात आती है स्वास्थ्य सेवाएं और गांव तक इसकी पहुंच कैसे। तो श्रोता साथियों, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर तक पहुँच आसान नहीं होती। तकनीकी इस दूरी को कम करने में मदद कर सकती है। हम देखते हैं कि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ऑनलाइन परामर्श, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता सामग्री के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाई जा सकती है। गांव की आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता भी डिजिटल साधनों के माध्यम से आवश्यक जानकारी तेजी से प्राप्त कर सकती है। लेकिन तकनीकी के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी, समय पर सलाह और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क, इन तीनों का मेल ही स्वस्थ गांव बना पाएगा।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि तकनीक का सबसे बड़ा लाभ ये हो सकता है कि गांव का युवा रोजगार की तलाश में केवल शहरों की ओर जाने के बजाय अपने गांव में भी नए अवसर खोज सकते हैं। डिजिटल सेवा केंद्र, ऑनलाइन काम, स्थानीय उत्पादों की बिक्री, कृषि आधारित व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल मार्केटिंग, मरम्मत सेवाएं और छोटे तकनीक व्यवसाय युवाओं के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। अगर गांव का युवा अपने क्षेत्र की समस्या पहचान कर उसका समाधान तैयार करता है तो वो केवल नौकरी खोजने वाला नहीं रहेगा बल्कि रोजगार पैदा करने वाला भी बन सकता है।
0: जी हाँ, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव में बनने वाले हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, स्थानीय कलाएं और पारंपरिक वस्तुएं अक्सर स्थानीय बाजार तक सीमित रह जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से इन उत्पादों को दूर के ग्राहकों तक पहुंचने के अवसर बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ग्रामीण उत्पादों की अच्छी पैकिंग, गुणवत्ता, पहचान और उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए। तकनीक बाजार तक पहुंचने का रास्ता खोल सकती है, लेकिन गुणवत्ता और भरोसा उस रास्ते को मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि गांव का विकास केवल सड़क और भवन बनाने से नहीं होता। विकास के लिए सही योजना भी जरूरी है, सही जानकारी भी जरूरी है और पारदर्शिता व्यवस्था भी जरूरी है। श्रोताओं, डिजिटल पंचायत व्यवस्था से योजनाओं, कार्य और वित्तीय जानकारी को और अधिक व्यवस्थित ढंग से दर्ज और साझा किया जा सकता है। भारत नेट जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस, ई शिक्षा, ई कृषि और अन्य डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। जब गांव का नागरिक जानता है अंजलि कि उसके गांव में कौन सा काम होना है, कितना काम हुआ है और उसका लाभ किसे मिल रहा है, तो उसकी भागीदारी बढ़ती है। तकनीक तभी सफल होती है जब वो लोगों को व्यवस्था से जोड़ती है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ बात आती है महिलाओं के लिए तकनीक के बने अवसर के बारे में। तो श्रोता साथियों, तकनीक गांव की महिलाओं के लिए भी नए अवसर पैदा कर सकती है। स्वयं सहायता समूह अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: महिलाएं ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर नई जानकारी प्राप्त कर सकती है और अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन इसके लिए महिलाओं को केवल मोबाइल देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें डिजिटल साक्षरता, वित्तीय जानकारी और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की जानकारी भी देना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जब गांव की महिला तकनीक को समझती है श्रोता साथियों, तो उसका लाभ केवल एक व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समुदाय तक पहुंचता है। गांव में खेती के साथ पशुपालन भी आय का महत्वपूर्ण साधन है। पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना, टीकाकरण की जानकारी, बेहतर नस्ल प्रबंधन, चारे की योजना और बाजार की जानकारी में तकनीक मदद कर सकती है। श्रोता साथियों, छोटे किसान यदि नई जानकारी को अपने पारंपरिक अनुभव के साथ जोड़ें, तो पशुपालन को अधिक व्यवस्थित और लाभकारी बनाया जा सकता है। यही तो नवाचार है कि पुराने अनुभव को छोड़ना नहीं बल्कि उसमें नई समझ जोड़ना है।
1: बिल्कुल अंजलि, तकनीक का उपयोग केवल खेती और व्यापार तक सीमित भी नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि गांव में गीले और सूखे कचरे को अलग करना, जैविक कचरे से खाद बनाना, प्लास्टिक का उचित निपटान करना और अपशिष्ट का पुनः उपयोग करना, इन क्षेत्रों में भी नए प्रयोग किए जा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर घर घर से कचरा अलग होकर आए और गांव में उसका सही प्रबंधन हो तो गांव साफ भी रहेगा और कई उपयोगी संसाधन भी तैयार किए जा सकते हैं। स्वच्छ गांव तकनीक से नहीं श्रोताओं, तकनीक के सही उपयोग और लोगों की आदत से बनता है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि किस मौसम में कौन सी फसल बेहतर होगी, कौन सा बीज स्थानीय मिट्टी के अनुकूल है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है और पशुओं की देखभाल कैसे की जाती है, ऐसी अनेक जानकारियां ग्रामीण समुदायों के पास हैं। आज आवश्यकता है श्रोता साथियों की इस स्थानीय ज्ञान को वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। इसलिए गांव का विकास तब सबसे मजबूत होगा जब मोबाइल की स्क्रीन और बुजुर्गों का अनुभव एक दूसरे से जुड़ेंगे।
0: जी हाँ जागृति जी, तकनीक जितनी उपयोगी है उसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: गलत जानकारी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, निजी जानकारी की सुरक्षा और डिजिटल माध्यमों का गलत उपयोग गांव के लोगों के लिए नई चुनौती भी पैदा कर सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, डिजिटल साक्षरता उतनी ही जरूरी है जितनी की डिजिटल सुविधा। हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि कौन सी जानकारी विश्वसनीय है, किससे अपनी निजी जानकारी साझा करनी चाहिए और किसी डिजिटल सेवा का उपयोग सुरक्षित तरीके से कैसे करना है। गांव की नई तस्वीर कैसी होगी तो कल्पना कीजिए कि एक ऐसे गांव की जहां किसान मौसम और बाजार की जानकारी समय पर प्राप्त करता है,
1: बिल्कुल,
0: जहां खेती में पानी जरूरत के अनुसार पहुंचता है, जहां बच्चे डिजिटल साधनों से नई चीजें सीखते हैं लेकिन अपनी स्थानीय भाषा और संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं, जहां पंचायत के काम की जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंचती है। इसी के साथ जागृति जी, जहां युवा गांव में ही नए व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं, जहां महिलाएं अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाती है, जहां सौर ऊर्जा से घर और गलियां रोशन होती है, जहां कचरा समस्या नहीं साधन माना जाता है और जहां तकनीक गांव के लोगों पर शासन नहीं करती बल्कि गांव के लोग तकनीक को अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, यही गांव की नई तस्वीर है।
1: बिल्कुल अंजलि, तकनीक अपने आप गांव नहीं बदल सकती, तकनीक एक साधन है, मंजिल नहीं। गांव की असली ताकत उसके खेतों में है श्रोताओं, उसके श्रम में है, उसके युवाओं में है, उसकी महिलाओं में है, उनके बुजुर्गों के अनुभव में और सबसे बढ़कर उसके सामूहिक संकल्प में है। अगर तकनीक किसान की मेहनत को आसान बनाए, अगर नवाचार पानी की बूंद बचाए, अगर डिजिटल शिक्षा किसी बच्चे का भविष्य बदले, अगर इंटरनेट किसी छोटे व्यवसाय को बड़ा बाजार दे, नई सोच गांव के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करे, तो यही तकनीक गांव के विकास की असली शक्ति बन जाएगी। श्रोताओं, हमें ऐसा गांव नहीं बनाना है जो केवल शहर की नकल करे, हमें तो ऐसा गांव बनाना है जो अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपनी जरूरतों को समझते हुए आधुनिक बने। क्योंकि गांव का विकास तब पूरा होगा जब तकनीक खेत तक पहुंचेगी, नवाचार घर तक पहुंचेगा और विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। आज जरूरत है कि हम केवल ये न सोचें कि तकनीक हमारे गांव को क्या दे सकती है, बल्कि ये भी सोचें कि हम अपने गांव की समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और नई तकनीक को साथ लेकर कैसे कर सकते हैं। यही सोच गांव को नई दिशा देगी अंजलि, यही नवाचार गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा और यही तकनीक मिलकर बनाएगी एक ऐसा नया गांव जहां परंपरा की जड़ें मजबूत हों, तकनीक के पंख हो और भविष्य की उड़ान खुले आसमान में हो।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी हमने कार्यक्रम में ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्चर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है अस्थमा और एलर्जी से बचाव के घरेलू उपायों को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि सावधानी, स्वच्छता और सही आदतों से सांसों को स्वस्थ हम रख सकते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब हम स्वस्थ होते हैं तो परिवार की जिम्मेदारियां, खेतीबाड़ी, कामकाज और बच्चों की देखभाल और रोजमर्रा के सभी कार्य आसानी से कर पाते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन मनीषा, जब सांस लेने में परेशानी होने लगे, बार बार छींक आए, नाक बहती रहे, खांसी परेशान करे या धूल मिट्टी के संपर्क में हम आते हैं तो शरीर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने लगता है।
0: जी हाँ,
1: जीवन की सामान्य दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए
0: जी हाँ,
1: आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तो कई लोगों को प्रभावित करता है, अस्थमा और एलर्जी से बचाव के घरेलू उपाय को लेकर।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारे गांवों और कस्बों में कई घरों में आज भी खाना बनाने के लिए लकड़ी, उपले और अन्य ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनसे निकलने वाला धुआं सांस की समस्या वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। अगर रसोई में धुआं अधिक होता है तो रसोई में हवा आने जाने की उचित व्यवस्था रखें, खिड़की और दरवाजे खुले रखें, संभव हो तो कम धुआं पैदा करने वाले ईंधन का उपयोग करें, चूल्हे के धुएं में लंबे समय तक बैठने से बचें। इसी तरह बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू का धुआं भी अस्थमा के रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी इसका असर हो सकता है। इसलिए परिवार में किसी को अस्थमा या सांस की समस्या हो तो घर को धूम्रपान मुक्त रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ हम देखते हैं मनीषा कि कई लोगों को तेज परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती, धूप बत्ती और किसी रासायनिक गंध से परेशानी बढ़ सकती है। हम अक्सर घर को सुगंधित बनाने के लिए इन चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी या अस्थमा है उनके लिए तेज गंध परेशानी का कारण बन सकती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए ऐसे लोगों के आसपास तेज परफ्यूम का उपयोग कम करें, रूम फ्रेशनर का अत्यधिक प्रयोग न करें, बहुत अधिक धुआं करने वाली अगरबत्ती या धुएं से बचें, सफाई के तेज रसायनों का उपयोग सावधानी से करें। इसलिए श्रोता साथियों, घर की प्राकृतिक सफाई, ताजी हवा भी वातावरण को बेहतर बनाने में मदद करती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को संतुलित भोजन करना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्रोता साथियों संतुलित आहार है उसकी बहुत जरूरत होती है। भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन और अन्य जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हमें शामिल करना है। किसी व्यक्ति को श्रोता साथियों यदि किसी विशेष भोजन से एलर्जी है तो उसे उस भोजन से बचना चाहिए। लेकिन श्रोता साथियों, बिना चिकित्सीय सलाह के बहुत से खाद्य पदार्थों को केवल इस डर से बंद नहीं करना है साथियों कि उससे हमें एलर्जी हो सकती है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि हमें पर्याप्त पानी पीना है। शरीर में पानी की उचित मात्रा बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मौसम, उम्र और शारीरिक गतिविधियों के अनुसार पर्याप्त पानी पीना हमारे लिए जरूरी है। हालांकि श्रोता साथियों, केवल अधिक पानी पीने से अस्थमा का इलाज नहीं होता, पानी को उपचार का विकल्प समझना हमारे लिए उचित नहीं है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि खेतीबाड़ी, निर्माण कार्य, सड़क की धूल, घर की सफाई के दौरान हवा में बहुत अधिक धूल हो सकती है। अस्थमा और एलर्जी वाले व्यक्ति को ऐसे समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धूल वाले स्थान पर काम करते समय मुंह नाक को उचित तरीके से ढकें। बहुत अधिक धूल वाले स्थान पर अनावश्यक समय न बिताएं। घर लौटकर हाथ मुंह धोएं, कपड़ों पर जमी धूल को साफ करें, बच्चों को धूल भरे स्थानों में लंबे समय तक खेलने से बचाएं। यदि उन्हें एलर्जी की समस्या है तो श्रोता साथियों, खेत में काम करना हमारी जरूरत है, जीवन का हिस्सा भी है, इसलिए काम से भागना जरूरी नहीं है बल्कि सावधानी के साथ काम करना जरूरी है। इसी के साथ मौसम में बदलाव के समय कई लोगों को मनीषा एलर्जी और सांस की समस्या बढ़ जाती है। ठंडी हवा, बारिश के बाद की नमी, धूल भरी आंधी या अचानक तापमान में बदलाव परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे समय पर श्रोता साथियों, मौसम के अनुसार कपड़े पहने, अचानक बहुत ठंडी हवा में जाने से बचें, शरीर को जरूरत के अनुसार गर्म रखें, पर्याप्त पानी पिएं, घर में सीलन और फफूंद न बनने दें। बरसात के मौसम में घर की दीवारी और कोनों में नमी जमा हो सकती है। नमी के कारण फफूंद पैदा हो सकती है जो कुछ लोगों में एलर्जी की समस्या बढ़ा सकती है। इसलिए घर में हवा और रोशनी आने देना, नमी वाली जगहों को साफ करना जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को नींद भी पूरी लेनी है। अच्छी नींद श्रोता साथियों शरीर और मन दोनों के लिए आवश्यक होती है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और दैनिक जो कार्य होते हैं वो भी बेहतर तरीके से होते हैं। यदि रात में श्रोता साथियों बार बार खांसी या सांस फूलने के कारण नींद खुलती है तो इसे सामान्य समझकर हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को इसकी जानकारी देना हमारे लिए

0: जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों यह अस्थमा के पर्याप्त नियंत्रण में न होने के कारण भी हो सकता है। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि तनाव को कम करने की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि तनाव और चिंता कुछ लोगों में सांस की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों मन को शांत रखने के लिए ध्यान, हल्का योग, प्राणायाम या अन्य श्रोता साथियों सुरक्षित विश्राम होते हैं जिनको हम अपना सकते हैं। लेकिन श्रोता साथियों प्राणायाम या किसी भी सांस संबंधित अभ्यास को अस्थमा की दवा का विकल्प समझना हमारे लिए उचित नहीं है। यदि किसी अभ्यास से सांस फूलती है या परेशानी बढ़ती है तो उसे रोककर हमें विशेषज्ञ की सलाह लेनी है।
1: जी हाँ मनीषा, अस्थमा और एलर्जी से बचाव का सबसे बड़ा आधार है अपनी समस्या को समझना, अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ बनाना। हर व्यक्ति को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी चीज उसके लिए परेशानी बढ़ाती है। किसी को धूल से परेशानी हो सकती है, किसी को धुएं से, किसी को तेज खुशबू से, तो किसी को मौसम बदलने पर। छोटी छोटी सावधानियां हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। साफ घर, स्वच्छ बिस्तर, धूल और धुएं से दूरी, पर्याप्त हवा, संतुलित भोजन और समय पर इलाज, ये सभी मिलकर बेहतर स्वास्थ्य की दिशा के महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि अस्थमा और एलर्जी को केवल घरेलू नुस्खों के भरोसे नहीं छोड़ना है। डॉक्टर की सलाह और निर्धारित उपचार सबसे महत्वपूर्ण है। आज से हम अपने घर में एक छोटी सी शुरुआत करें, देखें कि कहीं धूल तो जमा नहीं, घर में अनावश्यक धुआं तो नहीं हो रहा, बच्चों के आसपास कोई धूम्रपान तो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे घर में पर्याप्त साफ हवा आती रहे ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की सुरक्षा किसी एक दिन का काम नहीं है श्रोता साथियों, यह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। जब हम अपने घर आसपास के वातावरण को स्वस्थ बनाते हैं तभी हमारी सांसें हैं वो अधिक सहज और जीवन भी अधिक खुशहाल होगा। याद रखें, साफ हवा, साफ घर, सही इलाज स्वस्थ सांसों की मजबूत बुनियाद है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करूँ। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी, मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।